जिसपरा रेवा फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों न वखला वक्त बा वेंटी इन लो बगले रोट जा शेह बाके मुग अब्बा पाप जेम बन्यो के अमल फी चितू बा इटालिया उस दाला के बामों ने उस दाला